0: मैं हां कौन? तुहानू सर्व शक्तिमान गुरु दा हुक्म मनना चाहिदा है।
1: अच्छा, हुण तुहानू समझ आ गई है, जो है सो है। महाराज दा कहना मनना साडे दोहां दे हित विच है। हुण सबर रखो ते 6 महीने आराम करो, अपना चित गुरां दे चरणां विच लाओ।
0: बेशक मैं गुरु जी दा सिमरन करांगा।
2: इस दौरान कुदरत आप ही उस दे परिवार की देखभाल करन दी प्रक्रिया विच सी। उस रात उन्हां नूं खाण लई कुछ नहीं मिलिया अते उन्हां दे गवांडियां ने पुछिया,
3: तुसीं अज रात दा खाना क्यों नहीं बनाया?
2: अते पत्नी ने जवाब दिता,
4: जेड़ा साडे लई कमांदा सी ओ तां चला गया, सानू नहीं पता कि उस नूं की होया। हुण तां रब ही उस दी हालत जानदा है। साडा खाना जा भुखे रहना हुण तां रब दे हत्थ विच है। जे देण वाला देवे तां असी पकावांगे अते खावांगे, नहीं तां असी भी की कर सकते हां।
2: गुआंढियां ने सोचिया कि ए ठीक नहीं सी कि उन्हां कोल भोजन नहीं सी।
3: तुसी ज्यादा देर भुखे नहीं रहोगे, असी तुहाडी मदद करांगे, असी कुछ प्रबंध करदे हां।
2: अते शुरुआत लई हर परिवार उन्हां लई आटे दा एक थैला लियाया। गुआंढ विच 50 घर सन, इसलिए 50 बोरियां आटा इकट्ठा हो गया। इस तो लंबे समय वास्ते रोटियां बनाउन लई काफी आटा जमा हो गया। फिर इलाके दे लोकां ने उन्हां नूं नौकरियां दित्तियां। दोवें पुत्तर माहर कारीगरां दे सहायक बन गए। ओह अपना पैसा कमाण लग पे। एक औरत ने धी अते उसदी मां नूं सिलाई कढ़ाई दे पाठ देने शुरू कर दिते। जदों ओह सिख गए ओह भी कमाई करन लग गए। हुण भोजन की कोई समस्या नहीं सी, ओह रोजी रोटी कमाण लग पे। इस तरह पूरे 6 महीने बीत गए। वापस कोठी थे, गुरसिख ने कहा,
1: समा खत्म हो गया है, तुसी हुण जा सकते हो, गुरु दा हाथ सदा तुहाडे सिर ते बणिया रहे।
0: मैं आजाद हाँ, मैं जा सकता हाँ, मैं हुण अपने परिवार नूं देखना चाहुंदा हाँ।
2: ओह तुरंत उन्हां नूं देखण लई दौड़िया। ओह बहुत चिंतित सी कि किते ओह जिंदा भी हन या नहीं। जदों उसने उन्हां नूं देखिया तां उसदा दिल बाग बाग हो गया।
0: मेरे प्यारे तुसी ठीक हो? मैं तुहाडे बारे बहुत चिंतित सी, रब दा धन्नवाद तुसी ठीक हो।
2: ओह सिर्फ जिंदा ही नहीं सन, सेहतमंद भी सन। असल विच ओह पहला नालों भी ज्यादा तंदुरुस्त लगदे सन। उसदी पत्नी ने कहा,
4: जदों तुसी गवाच गए सी सारे गवांडियां ने सानू भोजन प्रदान करन लई योगदान पाया, फिर उन्हां ने सानू सिखलाई दित्ती ता जो असी कम कर सकिए। साडे सारियां दी कमाई नाल हुण असी बहुत सफल हां। साडे कोल पहलां नालों किते वध है। तुहाडे लई चिंता करन वाली कोई गल नहीं सी।
2: पत्नी दी इह गल सुन के ओह बहुत खुश होया। उसनूं गुरु जी दी खेड समझ आ गई। उसने समझ लिया कि गुरु जी ने सारा प्रबंध इसलिए कीता सी तां जो उसनूं विश्वास होवे। उसनूं हुण विश्वास होया कि रब ही उसनूं प्रदान करदा है। ओह गुरु जी दी खुशी अते शुक्रगुजारी नाल दुबारा मिलन गया।
0: हे सच्चे पातशाह, तुसीं मैनूं नरक विच्चों कढ के मेरियां अखां सामने असलियत लिया दित्ती है। मैं अपनी सारी उम्र अपने परिवार लई भोजन की चिंता विच गुजार दित्ती हुंदी, इस दी बजाए तुसी मेरी जिंदगी नूं बर्बाद होण तों बचा लिया है। मैं असल विच उन्हां दी स-

0: SeekNet presents Stories for Children.
1: Let me tell you another story. When I came home from school one day, I said to Mum, "Mum, will you tell me a story? Tell me a story about God, because I'm always searching for God." So she told me this story that she heard when she was a small child. A brother and a sister, Harpreet and Simran. And one day they were playing in the park, and the sister looked at Harpreet, who was jumping up and down and having a fun time. But it didn't last long, because in a few minutes, Harpreet got a bit bored. He turned to his sister and said, "Oh, Simran, I'm bored." And his sister said, "Oh, Harpreet, you're always bored." He says, "Yeah, but I can't help it, but I am bored. I want to do something. I want to do something exciting." Poor Simran had to think very, very quickly. And then she came up with a great idea. She says, "I tell you what." She pointed to a tree far away and she said, "You see that tree over there? I'll have you a race. The first one to touch the tree is the winner." Harpreet thought to himself, "Oh, this is good. I'm easily going to beat my little sister." And touching the tree, it wasn't hard. Simran started to think, "Well, I don't care what happens, but I'm not going to let my brother beat me." So they stood side by side, and then they said, "We'll count to three, and then we'll start running." So they stood side by side and counted to three. One, two, three, go. And then they both started running as fast as they could. Simran put her head down and she ran and ran and ran and ran and ran. Harpreet put his chin up and he ran and ran and ran and ran and ran. And they ran and ran and ran right up to the tree and they touched the tree at the same time. Simran looked at Harpreet and Harpreet looked at Simran, and then Simran said, "Harpreet, it's a draw." And Harpreet said, "Yes, Simran, I know it's a draw, but I still won." Simran said, "No, Harpreet, a draw means nobody's won and nobody's lost." But Harpreet said, "Ah, yeah, but don't forget one thing, Simran, you're a girl and I'm a boy. So that means I won the race." Well, when Simran heard that, she put her hands on her hips and says, "I beg your pardon, Mr. Harpreet. Just because you're a boy and I'm a girl, that doesn't mean you've won. It's a draw. That means nobody's won and nobody's lost." But Harpreet, no. He wasn't having any of that. He started jumping up and down. He started screaming and yelling and insisting, because he was a boy, he had won the race. Now, walking through the park was a certain Mr. Singh. Mr. Singh was a very wise man. As he walked through the park to get some fresh air and exercise, something that Mr. Singh did every day, he heard the children arguing. Mr. Singh thought to himself, "Well, it's a shame that the children are arguing. I'll see if I can help them." So he approached the children and said, "Excuse me, children. You look like sensible children to me. Why are you arguing?" Well, Simran said, "Well, sir, we've just had a race and I say it was a draw, but my brother Harpreet says he won the race. That's why we're arguing." So Mr. Singh thought to himself, "Let's see if we can resolve this situation." He said, "Well, how about this? Rather than argue, why don't I set you a task? And if you like, I'll be the judge and let's see who wins this time." Harpreet said, "Yeah, that's a good idea." Simran said, "Yeah, I'm up for that as well." So Mr. Singh went into his bag. He took out some paper. He took out a pen. He gave a pen and a piece of paper to Simran and a pen and a piece of paper to Harpreet. He says, "Now, all I want you to do is to write your name on the piece of paper. I will give you 5 minutes. You can go wherever you like. But there's one rule. And the rule is this, that nobody should see you writing your name. Is that understood?" And they both nodded their head and said, "Yes, sir, we understand the rules." He says you can go wherever you like, but in 5 minutes you must be back, and remember, nobody should see you writing your name. So Harpreet took his pen and his piece of paper, Simran took her pen and her piece of paper, and then they ran off in different directions. 5 minutes later, they both came back. "Ah," said Mr. Singh, "you're back. How did you get on?" They said, "Fine, fine, fine, fine, fine. Just fine." "OK, then let's start with you, Harpreet. Let me see your piece of paper." And when he showed his piece of paper to Mr. Singh, Mr. Singh looked at it and he said, "Wow, that's good." Because on the piece of paper, in nice, neat writing, he had written his name, Harpreet. He said, "Now tell me, Harpreet," he said, "where did you go?" He said, "Well, sir, I know where there's a secret cave. Not many people know about the secret cave. I know where it is. I went into the secret cave and I wrote my name on the piece of paper." Mr. Singh said, "Very good. Well done. In fact, excellent." Harpreet was really happy. In his mind, he was thinking, "Ha, see if you can beat me now, Simran." Then Mr. Singh said, "Now, Simran, let me see your piece of paper." And Simran gave her piece of paper to Mr. Singh. And Mr. Singh looked at it. Oh, the paper was completely blank. Mr. Singh turned the paper over, looked at the other side. Oh, it was blank again. Mr. Singh looked at Simran and said, "Simran, did you understand what I asked you to do?" She said, "Yes, sir, I understood you." "Okay, Simran, was your pen working?" "Yes, sir, my pen was working perfectly." She said, "Simran, do you know how to write your name?" She says, "Yes, sir, I go to school, I listen to my teachers, I do as I'm told, and I can certainly write my own name." Then he said, "Well, Simran, tell me, where did you go and what happened?" And Simran said, "Well, sir, when I left you, I went into the woods. I sat underneath a tree. And I was just going to write my name. And then I noticed on one of the branches there was a little bird. And the bird was watching me. So I didn't write my name there. Then I ran over to the bushes. I sat amongst the bushes. I was just going to write my name. And then I noticed there was a little hedgehog. And the hedgehog was watching me. So I didn't write my name there. And then I went into the secret cave. I know where it is. I went into the cave. I sat on a little rock. I took my pen and I was just going to write my name. And then I stopped." "Why did you stop?" said Mr. Singh. "Was there a bird watching you?" "No," said Simran. "Was there a hedgehog watching you?" "No," said Simran. "Was there a spider watching you?" "No," said Simran. "Then tell me, Simran, why didn't you write your name on the piece of paper?" Simran looked at Mr. Singh and said, "Well, sir, I felt that God was watching me." And when Simran said that, Harpreet put up his hand and said, "Excuse me, sir, may I say something?" Mr. Singh said, "Yes, you may." Harpreet said, "Well, sir, although I've written my name on the piece of paper and Simran has brought hers back completely blank, I think the winner of this competition has to be Simran, because she has realised that God is always watching us." And when Harpreet said that, Mr. Singh said, "Well, Harpreet, because you've shown respect to somebody else and you've acknowledged their achievement, that makes you a winner as well." Mr. Singh said, "God isn't up there in the heavens, but God is all around us." And on that day, both Simran and Harpreet were winners.
0: Would you like to hear more stories like this one? Come to seeknet.com/stories.
2: ਸਿੱਖਨੈੱਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
3: ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ जिथे गुरु नानक फेरी ते गए। एक बंदे ने अपने दोस्त नू दसिया कि तुसी ए खबर सुनी है, गुरु नानक इत्थे नेड़े ही रह रहे हन।
4: कौन? अच्छा अच्छा, ओ हाँ, मैनू लगदा है मैं उना बारे सुने है।
3: ओ रब दा बिलकुल सच्चा बंदा है, मैं जदों तक उना नू मिल नहीं लेंदा मैं कुछ भी खावा पीवांगा नहीं।
0: हर रोज ओ दोनों बंदे इकट्ठे ही काम करदे अते घर वापस आउंदिया समय अपने अपने राहां वल तुर पैंदे।
4: वाहिगुरु वाहिगुरु।
3: अते दूजा बंदा हले सोच रहा सी,
4: मैनू लगदा मैं भी गुरु जी नू मिलन जावा शायद।
3: करो चलन लग्या उसने अपने घर वाली नू कहा,
4: चंगा भागवान ने, मैं गुरु नानक नू मिलन चलिया।
5: मैं अते बच्चिया ने ए कुछ मिठाइया बनाया हन, ए तुसी गुरु जी नू पेंटा दे तौर विच दे देना। साडे कोल देन लई ज्यादा कुछ ता नहीं है, पर अजेहे संत नू कुछ ना कुछ ता देना ही चाहिदा है।
4: मैं गुरु जी नू ए पेंटा दे देंगा, तू फिकर ना कर।
3: गुरु जी नू मिलन जान वाले रस्ते विच उसने सड़क ते खड़ी एक औरत वेखी।
6: नाना उस रास्ते ना जा, इधर आ मेरे कोल, आ जा, आपा दोवां मिलके बहुत मजे करांगे, आपा जुआ खेडण जाके तेरा सारा पैसा लुटा सकदे आ, चल ना, तू मैनू थोड़ी शराब ही खरीद के दे सकदे।
4: वैसे ये सब सुनन विच किन्ना मजेदार लग रहे है,
3: पर मैं ता उस ही रस्ते ते चलिया गुरु जी दे वल।
6: की सिगरेट पीण दा मन है? एले सिगरेट पी, तेरी पत्नी नू है कदे भी पता नहीं चलेगा कि तू मेरे नाल है।
4: ठीक है, इस बार मैं इस दे नाले समा बितावांगा।
6: चलो चलिए, मैं चाहुंदी हां कि तू मैनू बहुत कुछ खरीद के देवे।
0: ता उस बुरे दोस्त ने घर विच बनाया मिठाइयां गुरु जी नू नहीं दितियां जो उसने वायदा कीता सी। इस दी बजाय उसने शराब पीती, सिगरेट पीती अते अपने पैसे दा जुआ खेडिया। उसने उना लोका नाल अपना समा बिताया जो कुछ चंगा नहीं करदे होए अपनी जिंदगी बर्बाद करदे हन।
6: गुरु जी नाल समा बिताना की हो जा लग्या?
4: अच्छा अच्छा, ओ गुरु जी, हाँ हाँ, चंगा से बड़ा ही अनंतमय सी थे, बड़ा ही चंगा सी।
6: कि उन्होंने सारी पेंटा स्वीकार की थी?
4: पेंटा केड़ी पेंटा? अच्छा अच्छा, मिठाइयां? हाँ मिठाइयां उन्होंने रख लिया थे कि हाँ कि हाँ आशीर्वाद, हाँ कुछ दे कुछ बहुत आशीर्वाद। हाँ
3: इस दौरान दूजे दोस्त ने अपना समा गुरु जी दी अते ओना दे संत रूपी भगतां दी संगत विच बिताया सी। हे गुरु जी, मैं तुहाडे तो कुर्बान जांदा हां, कृपा करके पेंटा स्वीकार करो, एस दी वरतों गरीबां दी सेवा लई करो। हे महान गुरु, मैं तुहाडी सेवा विच सदा हाजर हां, कृपा करके मैनू अपने चरणा विच जगा देओ। हर रोज ओ दोवें काम तो अपने घर वाल इकट्ठे तुर के जांदे अते फिर अपने अलग अलग राहां ते चले जांदे। एक गुरु जी कोल उना दे वचन सुनन,
7: वाहे गुरु,
3: शब्द गाउन,
7: वाहे गुरु वाहे गुरु,
3: दान करन अते साध संगत नाल समा बिताउण लई चला जांदा। अते दूजा दोस्त उस औरत कोल चला जांदा। उसने अपनी पत्नी अते बच्चियां नू झूठ बोलिया अते उना दी पेटां दी दुरवरतों कीती। उसने उना दा पैसा जुआ खेडण, उस औरत नाल शराब अते सिगरेट पीण विच खर्च कर दिता। उसने अपना समा बुरी संगत विच बिताया, उना नीवे लोका नाल जो अपनी जिंदगी खराब करदे सन। एक कई दिना तक हर रोज हुंदा रहा। आखर विच एक दोस्त ने कहा,
4: मेरी गल सुन, तू अपना सारा समा गुरु जी दे कोल चंगे काम करदे होए बितौना है, जदकि मैं अपनी पत्नी नू झूठ बोलदा हां अते मैं अपना सारा समा माड़े कमां विच बर्बाद करदा हां, पर फिर भी अपनियां जिंदगियां नहीं बदलियां। तू भी उही है जो पहला हुंदा सी अते मैं भी उही हां, ता फिर की फर्क पैंदा कि असी चंगा करिए जां माड़ा, अपनी जिंदगी ता उवें है जिवें पहला सी।
3: दूजे दोस्त ने कहा,
7: आओ आपा ये सवाल उस ईश्वर तो पुछिए मैनू विश्वास है कि आपां नू सही उत्तर मिलेगा। कल नू मेरे गुरु जी दे मिलन तो बाद अते तेरे ओ सब कुछ करन तो बाद जो तू करदा है आपां एथे ही मिलदे हां। आपां इस रुख हेठा ही मिलांगे अते आपां नू जवाब अपने आप मिल जाएगा।
4: इंज ही करदे हां, मैं देखण लई उत्सुक हां कि की होण वाला है।
7: ठीक है मेरे दोस्त, हुण आपां कल ही मिलांगे।
3: अगले दिन ओ गुरु जी कोल गया अते संगत दी निग्गी गोद विच बह के उसने रूहानी वचन सुने अते गुरबाणी दा गायन कीता। दूजा दोस्त उसे ही औरत कोल दोबारा गया। ओ इंसान जो हमेशा माड़े काम करदा रहा तय हुए टिकाने ते पहला ही पहुंच गया।
4: की तू इत्थे है दोस्त? नहीं,
3: उन्हें इंतजार कीता, होर इंतजार कीता, अते जदों ओ इंतजार कर कर के अक गया तो उसने मिट्टी विच कुछ लकीरां खिचनियां शुरू कर दितियां। मिट्टी विचों उसनू सोने दा एक टुकड़ा मिलिया।
4: सोना?
3: उसने होर खोदिया, ओनू कुजा मिलिया। उसने सोचिया,
4: अज मेरा दिन चंगा है, हो सकदा है इत्थे होर भी सोना होवे।
3: पर उस कुजे दे अंदर सिर्फ कौड़ा सी।
4: कौड़ा? ओहो, ये ता बड़ा निराशाजनक है। पर शुक्र है मैनू एक सोने दा टुकड़ा ता मिलिया, चलो यही सही है।
3: फिर थोड़ा समा इंतजार करन तो बाद दूजा दोस्त गुरु जी दी संकत तो वापस आया।
7: ओह,
3: ओ लंगड़ा रहा सी।
7: आए, मेरा पैर।
4: की हो गया तैनू?
7: मैं गुरु जी दी संगत तो होके वापस पैदल चल के आ रहा सी अते मैं तिलक गया ते मेरा पैर एक वड्डी कंडेदार झाड़ी ते पै गया। ओ मेरे पैर दे विच डूंगा खुब गई, माड़ी किस्मत आ मेरी।
3: ओह, दोवे ही बड़ी उलझन विच सन।
4: ऐस गाल दी कोई समझ नहीं लग रही। असी उस ईश्वर तो पुछया कि साडे चंगे जा माड़े कर्मा नाल कोई फर्क पैंदा है, अते कि ए ओदा जवाब है मैं बुरा कीता, मैनू सोना मिलिया, जद कि तू चंगा कीता अते तैनू सट वज गई।
7: मैनू विश्वास है कि ईश्वर ने सही जवाब ही दिता होवेगा।
4: मैनू ए जवाब बिल्कुल भी समझ नहीं आया, इसदा की मतलब होया?
7: मैं भी मंदा हां कि मैनू भी इसदी समझ नहीं लगी। आपां नू गुरु जी कोल जाना चाहिदा है, ओ सानू इनू समझाण विच मदद करनगे।
3: अगले दिन ओह दोवें गुरु नानक देव जी कोल गए।
7: गुरु जी, मैं हर रोज तुहाडे कोल आउंदा हां अते मेरा दोस्त भी हर रोज अपने परिवार नू एही दसदा है कि ओ तुहाडे कोल आउंदा है, पर इस दी बजाए ओह उस औरत कोल जांदा है जिसने इस नू झांसे विच पाया ते गुमराह कीता होया है।
3: उसने सारी स्थिति बारे विस्तार नाल दसिया, किवें उन्हां दोवां ने अपना अपना समा बिताया अते किवें उस नू सट वज गई अते उस दे दोस्त नू सुना लब गया।
7: सो असी दोवें उलझण विच हां, तुसी इस दे राहें सानू की संदेशा देना चाहुंदे हो?
3: गुरु जी ने अपनी डूंगी दूरदर्शता नाल समझाया कि अपनी पिछली जिंदगी विच चंगा दोस्त एक लुटेरा सी अते उसने लोकां कोलों बहुत कुछ लुटिया। उसने बहुत सारे झूठ बोले अते बहुत माड़े काम भी कीते। इस मौजूदा जिंदगी विच उसकी मौत कंडा चुभण करके लिखी हुई सी, पर उसने बहुत प्रगति कीती अते अपने समय की वरतों चंगे तरीके नाल कीती अते अपना मन उस ईश्वर दे पवित्र नाम नाल साफ कर लिया। ओ पवित्र संगत विच रच मिच गया अते अपने बहुत सारे माड़े कर्म तो लए। इस दे अपने उपर कीते कर्मा कारण इस दे कर्म इस हद तक ठीक हो गए कि मरण दी बजाए उस नू सिर्फ पैर ते ही सट लगी।
7: वाहे गुरु, गुरु जी मैं तुहाडा धन्नवादी हां अते मेरा दोस्त।
3: गुरु जी ने अपनी डूंगी दूरदर्शता नाल फेर तो समझाउंदे होए कहा कि अपनी पुरानी जिंदगी विच माड़ा दोस्त एक भला इंसान सी। ओ दूजियां नाल अपना सब कुछ सांझा करदा सी। एक वार ऐस ने एक संत आदमी नू सोने दा एक टुकड़ा दिता सी। उस श्रद्धा अते साफ दिली कारण सोने दा ओ सिक्का कई गुणा ज्यादा वध गया। उसनू एक पूरा सोने दा कुजा मिलन वाला सी, पर उस दे अपने करनी कारण उस दे चंगे कर्म कट गए ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ।
4: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
7: ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
3: ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ, ਭਾਵ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦਰਦ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਦਾ ਤੈ ਦੀਏ। ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਕੋ ਦੋਸ ਦੇਹੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਰਾਰਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰੜਾ ਫਲ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2: ਸਿੱਖ ਨੇਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।
8: My name's Amrit Nam. I listen to the SeekNet stories every day. Download the app to enjoy them all.
9: Who is our guru? That is what we're going to talk about right now. It is one of the most important stories that there is. The story of Gur Gaddi. Do you know what Gur Gaddi Day is?
8: That's the day we have a parade.
10: I love Sikh celebrations.
9: And do you know what Gur Gaddi Day is celebrating?
10: When the Siddhi Guru Granth Sahib became our only guru.
9: You got it halfway right. Our guru has two forms, and the Granth Sahib is one of them.
8: Really?
9: Yes, the Guru Panth and the Guru Granth.
8: I thought we just have one guru. I don't understand.
9: In order to understand that, first we have to talk about the beginning of everything.
8: Like everything? Like the Big Bang?
10: When the universe was created?
9: Yes. Before all of creation, there was one vibration. That's quite a revelation. The Big Bang was when the one vibration separated into different sounds.